2 अगस्त तक आत्म रस कीर्तन दरबार सजाया जाएगा, जिस विच 28, 29, 30 जुलाई नू 31 रागां दे आधार ते कीर्तन राग दरबार सजाया जाएगा। समा शाम दे 6 तो 9 तक होया करेगा। बाहर खुले पंडालां दे विच सजाया जाएगा दीवान। 1 अगस्त दिन शनिवार नू सवेरे 9 बजे नगर कीर्तन प्रारंभ होणगे अपने गुरद्वारा साहब तो 70 तो 124 तो सजे पासे खालसा स्कूल दे मूहरों दी जाके फिर 60 तो खब्बे पासों दी होके खालसा स्कूल दे मूहरे दी आके अपने गुरद्वारा साहब संपूर्णता होवेगी। 2 अगस्त दिन एतवार नूं अमृत संचार है। सवेरे 6 बजे अमृत पान करके गुरु महाराज जी दे तीहां पुत्र सजो। संगतां नूं बीबियां नूं बेनती है कि लंगर प्रसादे बनाउण दी सेवा आप जी कृपा करके नभाया करो जी। अज भी हुण भी और अगां भी सवेरे शाम जिन्ना भी समां आप जी को होवे 5 मिंट 10 मिंट आधा घंटा भावें 10-20 प्रसादे ही आप जी बना करके जे जाना ते चले जाया करो। जिन्ना भी समा होवे जरूर आप जी सेवा नभाया करो। बेनती प्रवान होवे जी। हुण चल रहा लड़ीवार इतिहास कथा विचार दे नाल जुड़दे हां। सेवा नभा रहे हैं ज्ञानी कुलदीप सिंह जी।

0: सतगुरु पाशाह महाराज नु कहन लगा के पाशाह जे बेड़ी किनारे ला दी ना तुसा बेड़ी च उतर जाना तो थोड़ा ते मेरा बिछोड़ा पै जाना, मैं बिछोड़ा जर नहीं सकांगा। प्यार दे विच वचन दे विच आण के जदों इह वचन आखे ना ते सतगुरु पाशाह महाराज ने नजरे रहमत कीती, ते नजरे रहमत जदों सतगुरां दी होई ना इस सतगुरु पाशाह महाराज ने इनू अपने हिरदे दे अंदर अपने सीने दे अंदर ही बिसा लिया। जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी, नदर निहाल नदरों निहाल कर दिता। सतगुरु पाशाह महाराज के चरणा ते मत्था टेक के ऐन पत्थर नूं बीड़ी ला दिती है। कला कला सिख उतरिया बिचो सब तो पहला यह उतरिया, एने बेड़ी नूं जिहड़ा कुंडा लगा हुंदा ना और रस्सा बन्निया है किनारे दे उपर लाया। जदों किनारे ते लगी कला कला सिख उतरिया, यह बाहरले पासे खड़ा। अखीर ते गुरु कलगीधर पाशाह महाराज उतरे है, उतरन तो पहला अपने बोझे विच हथ पाया, सिखा आ दरिया तो सानू पार करवाया, दरिया दे विच असीं तेरी बेड़ी विच बैठ के आए हां, तू मलाह है, बोल तेरी माया किन्नी बनी, तेनू माया दे नाल निहाल करदे आ। ये हाथ जोड़ के खड़ गया, कहन लगा कि पाशाह तेरी ते मेरी जात एक है, तू भी मलाह ते मैं भी मलाह, मलाह मलावां दे कोलों पैसे लैंदा चंगा नहीं लगता। भाई दया सिंह कहन लगे कि सिखा होश कर, बाजां वाले बापू नूं मलाह आखदा है कि तेरी ते मेरी जात एक है, तू दुनियावी मनुख है, दरिया दे विच बेड़ी चलाउण वाला है। हथ जुड़ के कहन लगा कि मैं दुनियावी मलाह हां, यह सतगुरु पातशाह महाराज अध्यात्मक दे मलाह ने। अज ये इस दुनियावी मलाह के उपर पत्तन के उपर आए ना, बेड़ी विच बिठा के इनू पार किया। इन्हां नूं जिदन मैं इहदे पत्तन दे उपर गया, अज मैं किराया लै लिया ना, तां जिदन कल नूं मैं भव सागर तों पार होना होया, मैं जावांगा इह सतगुरु पातशाह महाराज नूं देण वास्ते, मेरे को कुछ नहीं होवेगा क्योंकि मैं तां मंगता हां। बाणी की आंदी, हम भीख के भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता, दाता देण वाला हुंदा है ते भिखारी लैण वाले होया करदे ने, मेरे को कुछ नहीं देण वास्ते होवेगा। सतगुरु पातशाह महाराज ने नजरे रहमत कीती, सिखा तू सेवा कीती है, सिख आए उन्हां दी टहल कमाई है, तू कहना कि मेरे तो कुछ नहीं देण वास्ते होवेगा, जा तेरे गुरु नानक की कृपा हुई, तेरे ते गुरु नानक की रहमत हुई है, तू कि तेरिया आने वाली जड़िया भी इक्की मातू तेरिया इक्या कुला भव सागर तो पार हो गई, गज के आखो सतनाम श्री वाह। ए है गुरु नानक दे दर दी वडियाई, जेड़ा मन करके गुरु नानक दे घर सेवा करदा है ना, वह आप ता तरदा ही तरदा अपनिया आने वाली कुलां दा भी पार उतारा करवा लैंदा, ए गुरु नानक दे घर दी वडियाई है। आओ सारिआं दा धन्नवाद, धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दा कोटान कोट धन्नवाद। समा समाप्त है, साढ़े तो बाद मेरे सत्कारयोग बड़े अजीज ने विद्वान ने, मैं अत कथनी नहीं क्योंकि मैं आप इस फील्ड का तो नहीं सी, पर गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज ने वाह फड़ ली डॉक्टरी वाले पेशे तो इस पासे वल लै आंदा। शायद डॉक्टरी विच माया तो बहुत कमा लैंदा, चंगी पोस्ट ते भी हुंदा, पर जेड़ा अदब गुरु नानक दे घरों मिलदा ए कि उत्थों मिलना नहीं सी, माया मिलनी सी, ए अदब ए प्यार थवाड़ा सहयोग नहीं मिलना सी, विद्वान ने मेरे तो मैं इन्हां नूं सुन वाले कह लवां, इन्हां को सुन सुन के सत्कार योग ने जिन्ने माझे दे जथे ने, पर उन्हां दे विचों मेरा वीर पद्म साहब लालू घुमण साहब मिलखा सिंह जी मौजी साहब बलटोहा साहब उन्हां नूं बहुत अदब दे नाल सुणदा ते उन्हां दीआं सुणीआं गल्लां तुहाडे तक पहुंचा के ते तुहाडे तों असीसां लै जांदीआं। गुरु कृपा करे, मेहर करियो, नजर में रहमत करियो, गुरु पातशाह दे चरणां च अरदास करियो कि पातशाह बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिहाए, एक घड़ी के कारणे मत को कलंकित हो जाए, कड़ी पता नहीं किन्नी रह गई है, थोड़ी आ जा बहुती ये बापू जानदा ने। अरदास करियो कि जिन्ने सुवास है पातशाह बां फड़ के बस इसे तरह अपना जस करवाउंदे रहो ते अपने कोल लै जायो, जदों मर्जी तैयारे आ हुण गुरु कृपा करे, क्योंकि जो जो दातां दुनियावी तौर ते चाहीदियां हुंदियां बाबा जी साचा महाराज दी हजूरी पातशाह नूं उदू दुगणियां दे दित्तियां तां कि उहदा हंकार ही ना हो जावे। कृपा करियो शब्द अमृत वेले दा जागना ते बाणी पढ़न दी दात गुरु पातशाह महाराज बख्शिश करन, ते जदों लिजाणा है बस आवाज मार के लै जायो, मंजे ते ना बिठाली पातशाह, क्योंकि ए तेरा तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे, मेरा पता नहीं, हम आदमी हां एकदम ही मोहलत मोहर ना जाना। ਆਪਣਾ ਦਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਇਵੇਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ ਅਸੀਸ ਅਦਬ ਸਹਿਤਾ ਕੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਇਹ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੇਂਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਜੂਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਰੂਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ,

0: ओने कठे कर मजलूमा नू लड़ने दी जाच सिखाई
1: जो मारा फिर नवारे सी ओ बन गए संत सिपाही ने
0: ओने कठे कर मजलूमा नू लड़ने दी जाच सिखाई
1: जो मारा फिर नवारे सी ओ बन गए संत सिपाही ने
0: ओ दुश्मन सामे डट जांदे

मन तेरवी दरोही तेरे खांदी तेरवी दरोही तेरे खांदी गुरु चरना ते शीस रही चुका दूजी उसने उलारी फिर शीस दे दूजी उसने उलारी

0: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
1: So the Musiala, baby. Yeah.
2: Mercy.

सौ साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कोमो की पेशेंस का टेस्ट मत।

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है, जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारियां ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: संत पेटिया नानक मन परगास। अष्टपदी
1: संत संग अंतर प्रभु डीठा
0: ना प्रभु का लागा मीठा
1: सर्व समिग्री एक घट माहे
0: अनक रंग नाना दृष्टा है
1: नौ नदी अमृत प्रभु का नाम
0: यही मैं इसका विश्राम
1: सुन समाध अनहद तहनाद।

0: मन हर प्रभु जाने
1: अंतर बसे बाहर पियो ही
0: नानक दर्शन देख सब मोही
1: आप सत किया सब सत
0: इस प्रभु तेसक लिए उत्पात
1: इस भावे ता करे विसार
0: इस भावे ता एक अंकार
1: अनक कला लखी नह जाए
0: इस भावे तिस लय मिलाए
1: कवन निकट कवन कही है दूर
0: आपे आप प्रभुर
1: अंतर्गत जिस आप जनाए
0: नानक तिस जन आप बुझाए
1: सर्व भूत आप वर्तारा
0: सर्व नैन आप खनहारा
1: सर्व समग्री जा का तना
0: अपन जस आप ही सना
1: आवन जाने खेल बनाया
0: आज्ञाकारी कीनी माया
1: सब कह मत अलिप्त हो रहा है
0: जो कुछ कहना सो आपे कहे
1: आज्ञा आवे आज्ञा जाए
0: नानक जा पावे ता लय समाए
1: इससे होई सुना ही बुरा
0: उरे कहो किने कछ करा
1: आप ला करतूत आत्मी की
0: आपे जाने अपने जी की
1: आप साज धारी सब साच
0: ओत पोते अपन संग राज
1: ताकी गर्मित कही न जाए
0: दूसर होए तो सोजी पाए
1: इसका किया सब प्रवान
0: गुर प्रसाद नानक हो जान
1: जो जाने ते सदा सुख होए
0: आप मिलाए लय प्रभु सोए
1: ओ धनवंत कुलवंत पतवंत
0: जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत
1: धन धन धन जन आया
0: जिस प्रसाद सब जगत कराया
1: जानिया मन का यह सुहाओ
0: जन के संगत आवे नाम
1: आप मुक्त मुक्त करे संसार।

में क्या, पिछलो क्या क्या, दुसो क्या क्या, उत बरने के विभूत करनाय, केरा जंग ब्रह्मंग तरमंत जा क्या, शोक बरने के सर्वा परनाय, के जग तंग कृतियां के शत्रंग क्षत्रिय।

प्यारे गुरु प्यारे गुरुस्वारे सत्संगी जनो वड्डे भाग श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे दर्शन संगत सेवा प्राप्त होए कोटान कोट शुक्र है सतगुरां दा संगतां दे।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

यह जीव बहुते जन्म भ्रमया तां सतगुरु शब्द सुनाया। सतगुरु जीवन दाता को नहीं सब स्मयो लोक सुभाया। सतगुरु मिलिया सच पाया जिन विचों आप गवाया। जिन सचो सच बुझाया।

नींद ते रोहतक ए गवां करके मशहूर है, अच्छी अच्छी गवां। मैं कह मैनू बड़ी चंगी लगी है, मैं ले लई। ओ आ गए, कहन लगे मैनू दिखाओ। मैं कह देखो, जींद शहर विच बड़िया सरावां ने जो गवां नाल भरिया रहिंदियां ने। मैं चल के दिखाई, उन्होंने अपना हाथ सिर ते दे मारिया। कहन लगे ज्ञानी जी इनू लेके जा रहे हो। मैं क्यों, ये ठीक लक्षण नहीं ने, औखे होवोगे, दुखी होवोगे। ये सिर्फ दिसण नू खूबसूरत है, बाकी ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। थानू लक्षणा दा पता नहीं, सानू पता है। जे तुसी गौ लेनी है ते असी थानू लेके देंगे। ओ जिस वपारी कोल मैं लई, जाके संता ने उन्हों डांटिया भी ये मस्कीन और इन्हू गौ तो कोई डंग दी देनी सी, ये की कीता है तू। वो हाथ जोड़ के कहन लगा, महाराज जी की करिए, इन्होंने आप ही पसंद की है, इन्होंने आप ही पसंद की थी है। वो कहन लगे इन्हों लक्षणा का पता नहीं है। वाकई मैं गऊ के लक्षणा का पता नहीं। कुछ लक्षण ऐसे ने दिस पैंदा है, इराकी घोड़ा है, वधिया घोड़ा है, ये वधिया गऊ है। लक्षण ही दस देंदे ने, ये जमीन वधिया है, धरती वधिया है, ऐसे खोजी मौजूद ने। अज ते विज्ञानक ढंग नाल खोज करदे ने, ये धरती बड़ी उपजाऊ है, बहुत वधिया है। लेकिन पुराने जमाने दे सूईए लक्षण देखदे सन। तो मैं अर्ज करा, मनुख धार्मिक है, धार्मिक मनुख दे कुछ लक्षण होंदे ने, ये भी मैं अर्ज करदे। उन्हां लक्षणां तो पता चलदा है धार्मिक है, मनुख संत है, भगत है। लक्षणां तो पता चलदा है संत है, भगत है। ये लक्षण ते मैं बाद विच बयान करांगा। पहले गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ये पावन पवित्र शब्द, वो कहिंदे ने मैं धर्म दे मार्ग ते चलिया ते हां अपने उत्ते लेंदे ने। मैं उस बच्चे दी तरह चलिया जिसने अज चलना सिखिया, ते जिस बच्चे ने अज ही चलना सिखिया वो कितना क चलेगा, एक कदम दो कदम गिरेगा, गिरेगा, लाजमी गिरेगा। बच्चा लंबा पेंडा तय नहीं कर सकता। जैसे शरीरक तौर ते मनुख बच्चा होवे, ते ओ बच्चा जिसने अज चलना सीखे किन्ना क चलेगा, एक कदम दो कदम गिरेगा, गिरेगा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा शब्द बड़े ध्यान नाल सुनना। भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया, सर्वन ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। हे प्रभु, हे गुरु, तू मेरी बां पकड़, मेरी उंगल पकड़, मैं नहीं चल सकता, मैं ते गिरदा। वाकर दी लोड़ पैंदी छोटे मासूम बच्चे नू चलन वास्ते। मां बाप दी उंगल पकड़ के चलना सिखदा। सतगुरु कहिंदे ने, हे प्रभु, मैं तेरे मार्ग ते चलते पिया, पर उस बच्चे दी तरह जिसने अज चलना सिखे, तो कितना क चलेगा, एक कदम दो कदम गिरेगा। धार्मिक तल ते किवें पहचान करोगे, चल भी रहा है ते गिर भी रहा है। सच बोले है चल पे है, झूठ बोले है गिर गया है। अंदर दया दा वासा होया है चले है, अंदर कठोरता दा वासा होया है गिर गया है। अंदर दान दी रुचि पैदा हुई है चल पे है, अंदर बेईमानी दी रुचि हुई है गिर गया है, गिर गया। अंदर नितनेम करण दा चाव पैदा होया है चल पे है,
पर गंदा लिटरेचर गंदा साहित्य पढ़न का

0: और पैदा हो गया गिर गए। हमेशा शरीर करके बच्चा बच्चा नहीं रहता। धार्मिक तरते थे कई 70-80 साल तक भी बच्चे ही बने रहते, कुछ भी नहीं, चलते ने गिरते ने, सत्संग भी कर लेते ने, कुसंगत भी कर लेते, दान भी कर लेते ने, बेईमानी भी कर लेते, सच भी बोल लेते ने, झूठ भी बोल लेते, जीवन भर ऐसा चलता है। इस वास्ते ईरानी सूफी संत सादी ने ते साफ कह देता है, बुजुर्गी बा अकल अस्त नके बा साल, तवंगरी बा दिल अस्त नके बा माल। बुजुर्गी उम्र करके नहीं है भई ये 70 साल का है, 80 साल का है, 90 साल का है, कहते उम्र करके बुजुर्गी नू ना नापो, अकल करके नापो। अकल कितनी है, समझ कितनी है। कई तन करके बुजुर्ग होंदे ने, अकल करके बच्चे ही होंदे ने, बच्चियां दी गल करदे, बिल्कुल बचपना होंदा है। इस तो उल्ट भी हो सकता है, कई शरीर करके ते बच्चे होंदे ने, अकल करके बुजुर्ग होंदे ने। शरीर करके ते साढ़े 5 वरिया दे ने, धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज जिस दिन गुरुगद्दी ते बैठे ने, अकल करके 100 साल देने बुजुर्ग ने, महान। शरीर करके जो दीवारा दे चिने जा रहे ने, मासूम बच्चे ने, मासूम बच्चे ने, अकल करके बुजुर्ग ने, बुजुर्ग ने। इस तो उल्ट भी है, शरीर करके ते बुजुर्ग ने 70 साल 80 साल हो गए, अकल करके निरे ही बच्चे दे बच्चे ने। मैं कैलिफोर्निया दे कई गुरुद्वारे च देखे 70-80 साल दे बुढ़े 10-11 बजे आ जाते हैं गुरुद्वारे, दिन भर ताश खेडते हैं कई गुरुद्वारे च, गप्पा मारते हैं, निंदा उस्तद करते हैं, फिर जो संध्या होने लगती है, रहराज साहब का पाठ शुरू होता है, कथा कीर्तन का वेला, भजते ने इंज जिमें बिच्छू कटेगा, भजते ने। हुण गुरुद्वारे का नाम है की लिया, मैनू कहना पिया एक नू जद जान लगे, मैं कह 3 जथियां का कीर्तन है अज, एक जथा दरबार साहब तो आया, 2 होर वड्डे जथे दिल्ली तो आए ने, ते मैं कथा भी करनी है, रुक जाओ। कहिंदे इह ते हुंदा ही रहिंदा, इत्थे होर की होना, इत्थे हुंदा ही रहिंदा। तो उत्थे मैनू कहना पिया, ये उम्र करके बुजुर्ग ने, अकल करके बच्चे ने, अकल करके बच्चे। गुरु हरकृष्ण जी महाराज तन करके शरीर करके बच्चे ने, अकल करके बुजुर्ग ने। कलगी धर दे लाडले तन करके बच्चे ने, अकल करके बुजुर्ग ने। 7 साल दा प्रहलाद बुजुर्ग है, 60 वरिया दा हरनाकश बच्चा है। प्रहलाद नू कहिंदा है, तू जपया कर जल हरनाकश थर हरनाकश, जब तू जपेगा ते तेनों देख के बाकी बच्चे भी जपणगे। ते 7 वरिया दा प्रहलाद कहिंदा है, बापू की बच्चियां वाली गल करदे हो, जल है राम थल है राम। ये 7 साल का बच्चा बुजुर्गों वाली गल करता है, और 60 साल का बुढ़ा बच्चों वाली गल करता है। बच्चों दे कदी कदाई कोई बुजुर्ग होंदे ने, बुढ़िया दे बहुते ते बच्चे ही होंदे ने, गुस्ताखी वर बच्चे ही होंदे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, जिंदगी एवें गवाई जांदे। ताश खेडदे होया नो एक सज्जन ने पूछ लिया, की कर रहे हो, समा पास पै करदे आ। फिर मैनू विचकार बोलना पिया, समा रहा भी है, तुसी ते आखरी दहाने ते बैठे हो, समा रहा भी है, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਜੂ ਸਮਝ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਓ ਨਾ ਹੀ, ਬਜਲੇ ਨਾ ਮੁਰਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਇਤਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾ ਅਕਲ ਅਸਤ, ਨਖੇ ਬਾ ਸਾਲ, ਤਵੰਗਰੀ ਬਾ ਦਿਲ ਅਸਤ, ਨਖੇ ਬਾ ਮਾਲ। ਅਮੀਰੀ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਤੋਂ ਨਾ ਨਾ ਪੋਏ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਇਤਨੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੜੇਗਾ ਸ਼ੌਮ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਾ ਪੋ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ, ਇਹ ਬਸਰਾ ਤੋਂ ਬਗਦਾਦ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਠਦੇ ਰਸਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਈ, ਨਖਲਿਸਤਾਨ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਰਖਤ ਹੋਵਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਸਰੋਵਰ, ਉਹਨੂੰ ਨਖਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੁਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਉੱਠ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਨ ਕੋਲ ਸੀ ਰੋਟੀ, ਖੋਲ ਕੇ ਜੈਸੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਆ ਗਏ। ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਕੂਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਠ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ, ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਵਾਂਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਾਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਨ ਖਾਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਲੈ ਤੂੰ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਿਆ, ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਨੰਦ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਚਚੇਰਾ ਬਿਰਾ ਸੀ, ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਰਮੰਡਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ, ਬਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵਕਤ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਆਖਿਰ ਦੋ ਕੋਹ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਚਾਰ ਮੀਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅਜੇ ਅੱਧੀ ਵਾਟ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਨੰਦ ਤੂੰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ? ਹਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਦੇ। ਕਰਮੰਡਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਵਾਟ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਮੰਡਲ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਵੱਖ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10 ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ, ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ, ਬਰਾਬਰ ਨੇ। इस चक्कर च ना पैना जिन्हें करोड़ दान किया महान दानी है कख नहीं दान है ओदा एक रुपया उस करोड़ तो घट नहीं है ओदी कुल संपदा ही 10 रुपए से इकर मंडल पानी का ही सी ओदे कोल महात्मा बुद्ध कोल होर कुछ भी नहीं सी दे दिता मोगरे में मन ते तन ते धन लो सिर है सब ही नहीं को कलगीधर पातशाह कहंदे ने मेरे घर दे जतन करके मन करके धन करके जो कुछ भी है सब जगत दा सब खालसे दा अपना कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं अमीरी माल असबाब तो नहीं है एदे कोल इतनिया महल माड़िया ने एदा इतना बैंक बैलेंस है एदे कोल इतनी धन संपदा है अमीरी नापी जांदी है दिल तो अगर दिल दे बिराह वास्ते भी थां कोई नहीं प्यो वास्ते भी थां कोई नहीं मां वास्ते भी थां कोई नहीं तो इनु अमीर आखोगे महाशोम मनुख कुछ भी नहीं गरीब मनुख लक्षण दस देने स्वभाव दसदा है तर्जे जिंदगी दसती है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर गरत परत गह लेहो अंगुरिया हे प्रभु मेरी उंगल पकड़ मैं नहीं चल सकता मैं तेरे रस्ते ते चलते पिया पर उस बच्चे दी तरह जिन्हें अज चलना सीखे है ते जिस बच्चे ने अज कदम पुटे ने कितने क पुटेगा गुजरात दे इलाके च मैं देखा है जिस दिन बच्चा पहला कदम पुटे ना ते ओ घर दे शगन मनांदे ने लड्डू वंडदे ने नचदे ने खुशियां मनांदे बच्चे नू चलना आ गया है फिर जिस दिन बच्चा जबान खोलन लग पैंदा पहला बोल बोलदा है फिर खुशी मनांदे ने फिर ओ अपना इसनू अपने ढंग नाल मिठाइयां बना के वंडदे ने पड़ोसियां नू बुला के रिश्तेदारां नू बुला के साडा बच्चा बोलन लग पिया है ओदी जबान चो बोल निकले है 4-5 साल दा बच्चा हो जाए ते बोले ना मां बाप नू चिंता हो जाती समझ नहीं आउंदी बोलदा नहीं पिया 3 साल दा बच्चा हो जाए कदम ना पुटे खड़ा ना होवे मां बाप नू चिंता हो जाती पता नहीं गल की है कदम ही नहीं पुटदा खड़ा ही नहीं होंदा महाराज कहंदे ने हे प्रभु चलते पिया तेरे मार्ग ते पर उस बच्चे दी तरह जिसने अज कदम पुटे है जिदा ध्यान थोड़ा जिहा भी शब्द दी तरफ गुरु दी तरफ चले है समझ लो उसने कदम पुटे है ते जिदा ध्यान ही नहीं चलिया सुरत शब्द दा मेले सुरत ध्यान नू कहंदे ने सुरत शब्द दी तरफ गई है कि नहीं पाठ कर रहा है सुरत उदे च है कि नहीं सुरत स्रोत नू भी कहंदे ने सुनन नू भी कहंदे ने सुरत दे 3 अर्थ ने चलो मैं ये भी दोहरा दिया सुरत सुनना सुरत समझना सुरत जुड़ना इत सुरत दे च है सुन रहा है ते जे सुरत दे च है ते सुरत आ जाएगी समझ आ जाएगी ते जे सुरत आ गई है ते सुरत जुड़ जाएगी ध्यान जुड़ जाएगा सुरत सुनना सुरत समझना सुरत जुड़ना पर पहले ते सुनना है पढ़ी जा रहे सुनदा ते है नहीं पिया अजे ध्यान नहीं चले अजे बच्चे दी तरह है जन्म ते इसका हो गया है चलना कोई नहीं है देखो ते मैं फिर अर्ज करा 3 साल हो जान बच्चा चले ना मां बाप नू चिंता हो जाती है 50-60 साल हो गए ध्यान शब्द दी तरफ चलिया ही नहीं गुरु नू भी चिंता हो जाती है की हो गया इसनू क्यों नहीं चलता मैं अर्ज करा घट लोगां दी सुरत शब्द दी तरफ चलती है इस वास्ते पढ़न दे नालों गुरबाणी पढ़न दे नालों सुनना लखां गुणा औखा है बिना सुरत तो सुन ही नहीं सकेगा नहीं सुन सकेगा पर बिना सुरत तो पढ़ सकेगा भटकी हुई सुरत नाल भटके हुए ध्यान नाल भी पढ़ सकता है पढ़न वास्ते ध्यान बार करना पैंदा है नजरां भी बार करनियां पैंदियां सुनन वास्ते ते शायद अखां भी बंद करनियां पैण और ध्यान नु अंतर्मुखी करेगा ता ही सुन सकेगा, वरना नहीं सुन सकता। ये भी मैं अर्ज करा, एक मनुख उची उची बोल रहा हुंदा है, दूजा सुन रहा हुंदा है, सुनन वाला फिर कह देंदा है, एक दफा फिर आख मैं नहीं सुनिया, तू क्यों नहीं सुनिया? कहिंदा मेरा ध्यान किसे और पासे चला गया। इहदा मतलब ध्यान शब्द दे च नहीं, पाठ कर रहे है ध्यान नहीं है, अजे इनू चलना नहीं आया, नहीं आया। समाज सुधारका ने, राजनैतिक लोगों ने जो मनुखी समस्यावां दा समाधान पेश कीता, उदे नाल वक्ती तौर ते ते सिलसिला ठीक, लेकिन मन दियां बेचैनियां दूर नहीं होईयां। हर मुल्क बेचैन है, हर मुल्क परेशान है, हर मुल्क चिंता तुर है। समाज सुधारकां ने ते राजनैतिक लोगों ने जो समाधान पेश कीते, इहदे नाल मनुख दी समाधी ते लगी ना, आनंद ते मिलिया ना। अवतारी पुरुषां ने जो समाधान पेश कीते, लोगों ने कबूल ना कीता। किहड़े अवतारी पुरुष नूं लोगों ने कबूल कीता है? किसे नूं तत्ती तवी ते बिठाया, किसे नूं जेल दे च पाया, किसे दे बंद बंद कटे ने, किसे नूं सूली ते लटकाया, किसे नूं बनवास भेज दिता है? किहड़े अवतारी पुरुष नूं वक्त दे लोगों ने कबूल कीता? नहीं कबूल कीता। भगतां नूं भी नहीं कबूल कीता। कबीर दे उते बड़े वड्डे तीन इल्जाम लगे ने, कतल दा इल्जाम लगया, जेल भी भोगनी पई, चोरी दा इल्जाम लगया, सिकंदर लोधी ने अंदर पाया, दुराचार दा भी इल्जाम लगया। केड़ा इल्जाम नहीं लगया? ईर खालुआ ने सोचिया उंज ते पकड़िया नहीं जाएगा, कोई ऐसी व्यौंत बनाई अंदर ही जाए, एदा बाहर होना ठीक नहीं, हद हो गई। समाज सुधारक ते राजनैतिक मनुख दियां मानसिक समस्यावां दा समाधान पेश ना कर सके, बनी हुई है समस्या। हर मुल्क दे समाज सुधारक ते राजनीति मौजूद है, पर बेचैनी मौजूद है, परेशानी मौजूद है, चिंता मौजूद है। संत जना ने, भगत जना ने, अवतारा ने जो मानसिक समस्यावां दा समाधान पेश कीता, वो मनुख ने कबूल नहीं कीता, परवान नहीं कीता। तो समस्या त्यों दी त्यों बनी हुई है, हजारां साल तो बनी हुई है, और रोज रोज मनुखता दे तल ते बेचैनी परेशानी वधदी जा रही है, घटदी नहीं पई। मन दी समस्यावां दा समाधान की है? महाराज कहिंदे ने धर्म। इहदे नाल मन दी समाधि लगेगी, आनंद प्राप्त हो जाएगा, महारस दी प्राप्ति हो जाएगी, महाखेड़े ते खुशी दी प्राप्ति हो जाएगी। धर्म की है? जो निर्मल कर्म ते खड़ा है, ते निर्मल कर्म की है? हर को नाम जप, निर्मल कर्म, बस ऐ निर्मल कर्म। कल मैं अर्ज कीती सी, मनुखां दी सारी गति हलचल बोल चाल नाल कायम है, शब्दां दे कायम है। शब्दां दी बड़ी महिमा है, बोलां दी बड़ी महिमा है। दो कौड़े बोल बोले ने, अगला सारी रात तड़पदा रह गया। हुण उहनूं कोई आखे ना तैनूं कोई सूआ लगे, ना तीर लगे, ना गोली लगी है, एवें तड़पी जा रहे। दो बोलां ने तड़पा के रख दिता, दो बचना ने तड़पा के रख दिता, पर दो मिठे बोल तड़प दे दिल नूं शांति भी दे सकते। प्रभु दा नाम एक बोल है, बोल नूं संस्कृत विच मंत्र कहिंदे ने, शब्द कहिंदे। शब्द मंत्र बोल वाक इक्को ही गल है, गुरु दा वाक, गुरु दा शब्द, गुरु दा बोल, गुरु दी आवाज, गुरु दा मंत्र। मैनूं चंगी तरह याद है, अजे भी पंजाब दे कुछ पिंडां च आवाजा लो गुरु दा, वाक नो हुक्मनामे नो इंज कहने गुरु दा आवाजा लो इधर फ्रंटियर लेंदा पंजाब जो पाकिस्तान दे चला गया आवना ते ग्रंथी साहब नो कहंदे सन गुरु दा बोल सुना दो हुक्मनामा सुना दो पंजाबी च बोल कह देंदे ने वाक कह देंदे ने संस्कृत दे शब्द कह देंदे ने मंत्र कह देंदे ने गुरु मंत्र गुरु शब्द गुरु दा बोल गुरु दा वाक उस वाक नूं बार बार जबान दोहरावे ते मन सुने मन दे चों दुख निकल दे जांदे ने पाप निकल जे जांदे ने और एक दिन वो मंत्र सिद्ध हो जांदा है। कहिंदे ने वाक सिद्ध हो गए मंत्र सिद्ध हो गए बोल सिद्ध हो गए शब्द सिद्धि इस नूं मिल गई। कल दे बोल मैं थानू दोहरावा जद बोलन दा मन दे ख्याल आउंदा है पुरना आउंदा है पवन नाभी नाल टकरा नाभ खुलदी है नाभी खुलदी है उत्थों धुन उठदी है इस वासे नाभी नूं धुन ही कहिंदे ने। ओह जिहड़ी धुन उठदी है ओहनूं परा कहिंदे ने धुन है लेकिन अजे उस दे विच शब्दां दा अक्षरां दा मेल नहीं है। धुन ते गुंगा भी खड़ी कर लेंदा है पर शब्द उसनू नहीं दे सकता। इस वास्ते धार्मिक दुनिया दे च गुंगा पछड़ जांदा है बिल्कुल पछड़ जांदा है। अंधे ते संत होए ने अज मैं सवेरे ही सुना रहा सी गुरुद्वारे देच कि सूरदास ते नेत्रहीन सी अंधा सी भगत बन गया उहदे इक पंक्ति गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्ज है पर किधरे भी किसे धर्म ग्रंथ देच और इतिहास देच नहीं मिलदा कि कोई गुंगा ब्रह्म ज्ञानी बन गया होवे कोई गुंगा पूरन संत बन गया होवे कोई गुंगा ब्रह्म ज्ञानी बन गया। विकास रुक जाता है शब्द का जप नहीं कर सकता। जब शब्द नूं बार प्रगट नहीं कर सकता भोजन बना ही नहीं सकता तो खाएगा कि इतने आप खाना पैंदा आप बनाना पैंदा अपना हथी अपना आपे ही काज सवारी है। कल दे लफ्ज मैं दोहरा दें शरीर का भोजन हथ कमांदे ने हथ बनांदे ने मूह खांदा मन का भोजन जबान बनांदी है कन छकदे ने। सरवनन गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत गावीए सुनिए मन रखिए जबान भोजन बनांदी है वाहेगुरु वाहेगुरु कन्ना द्वारा मन छकदे ने। जैसे शरीर दे भोजन पहुंचता है मुंह द्वारा मन दे शब्द पहुंचता है कन्ना दे द्वारा। भोजन नो शरीर दे रोम रोम तक पहुंचाना आखिर भोजन ही बच के खून बनता है ते सारे शरीर ही दौड़दा है भोजन ही बच के पच के मांस बनता है हड्डियां दी शक्ति बनता है इंद्रियां दी शक्ति बनता है। जो असी भोजन खांदे हां उसका लोड़वंद हिस्सा शरीर दे विच रह जांदा है बाकी खारज हो जांदा है। जो असी वेखदे हां बोलदे हां सुनदे हां जिस नाल मन जुड़ जांदा है ओ ते मन दे च रह जांदा है जिस विच मन जुड़दा नहीं मन मनदा नहीं ओ वेख्या होया सुनिया होया बोलिया होया अजा ही चला जांदा है खारज हो जांदा है। मैं फिर दोहरा दें जो असी खांदे हां जो पच जांदा है वो शरीर दिया लोड़ां दी पूर्ति कर देंदा है उन बन जांदा है मिंज मास बन जांदा है बाकी खारज हो जांदा है। जो असी वेखदे हां सुनदे हां बोलदे हां ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਉਹੀ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਰਜ ਕਰਦਾ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਜੈਸੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈਸੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਮੰਨਣ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮਨ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਤਸੰਗ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਫਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜਾਈ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੋ ਭੋਜਨ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਖੂਨ ਬਣਦਾ, ਉਹੀ ਮਾਸ ਬਣਦਾ। ਜੋ ਬੋਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਜੈਸੇ ਭੋਜਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਜਨ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ। ਭੋਜਨ ਹੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਜਨ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥਿਏ, ਇਨ ਬਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਵ। ਜੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਵਾਕ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਵਨ ਨਾਭੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਧੁਨ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਠ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਖਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਭੋਜਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛਕਣਾ। ਗੱਲ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੰਘਾਣੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕੀ 50-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਖਾਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਬਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਛੇ, ਤੇ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਛੱਕ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੋਮਿਟ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਈਰਖਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਨਾਮ ਕੀ ਜਪੇ, ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਈ ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਛੇ, ਪੁੰਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰੂੰ, ਪਚਾਵੇ ਵੀ ਸਹੀ, ਬਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਪਦਿਆਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲਿਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਗਾਥਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਤੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦੋਤੇ ਸਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਆਪ ਦਾ ਦਮਾਦ ਸੀ, हसन छोटा जहा सत अठ वरिया का अपने नाना हजरत मुहम्मद साहब नु कहंदा है फजर दी नमाज मैं भी पढ़नी है। पांच नमाजा ने ना फजर दी, जोहर दी, असर दी नमाज, मगरब दी नमाज, फिर रात दे समय इस टाइम है ईशा दी नमाज। पांच नमाजा ने फजर दी नमाज मैं भी पढ़नी, जोहर दी ओ पढ़दा सी, मगरब दी ओ पढ़दा सी, पर फजर अमृत वेले सुता बच्चा आखर सुता रहंदा सी। कहन लगा अपने नाने नू मैनू भी उठाना, फजर दी नमाज मैं भी पढ़नी, तुसी बड़ी महिमा दसदे हो फजर दी नमाज दी, मैं भी पढ़नी। भावे मोहम्मद साहब ने कहा तू अजे बच्चा है, चलो जोहर दी पढ़ लेना, असर दी पढ़ लेना, ठीक। उन्हें जिद की, मोहम्मद साहब ने उसनो फिर जगा लिया, ठीक है, जिद करता है बच्चा, कहिंदा फजर दी पढ़नी है। सवेरे लै गए खाना खुदा दे, पढ़ी उसने नमाज, उन्हों महसूस होया ईशा असर मगरब जोहर दी नमाज तो जिहड़ी फजर दी नमाज है इहदे च बरकत बड़ी है, रस बड़ा है। धन गुरु रामदास जी महाराज कहिंदे ने हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना। बड़ी बरकत है, उन्हों रस आया, उन्हों कुछ खेड़ा मिले, उन्हों कुछ ताजगी नसीब हुई, उदी मन दी दुनिया कुछ प्रफुल्लत हुई। नमाज पढ़ के दोवें वापस आ रहे नाना ते दोता। ये अरब दा इलाका गर्मियां दे महीने, लोकी बाहर सुते कोठियां ते सुते खुले, पुराने जमाने च इस तरह ही होंदा सी। हसन हजरत मोहम्मद साहब नो कहिंदा कि किन्ने बदकिस्मत ने मूर्ख ने, आबे हयात खुदा वंड रहे है कि सुते पे ने, बड़े मूर ने। पता है मोहम्मद साहब ने की आख्या, वो एक दिन फजर दी नमाज पढ़ी उन सारे ही मूर्ख दिखाई देन लग पे, तू अपनी नमाज कजा की थी है, मेरी भी कजा की, इन्हां ते तरस करना चाहिए सी, तो मूर्ख कहन लग पे। आ चल के फिर पढ़ी है, तू अपनी भी कजा की थी है, मेरी भी कजा की। इस तरह मैं देखदा चार पांच दिन कोई नाम जपदा है माड़ा जिहा किते रस है, ओहदे नाल पैस करदा है, ओहदे नाल बह, ओहदे नाल गुथम गुथा, ओहदे नाल गुथम गुथा, समझ लो इहनूं पचिया कोई नहीं, हजम नहीं हो। जे को खावे जे को बुंचे तिसका होए उदारो, हजम भी करे। भोजन दी बुरकी पहले मुंह दे चौंदी है, स्वाद आ जाता है, पर ये अजे खून नहीं बने, अजे मांस नहीं बने, अजे शरीर दी शक्ति भी नहीं बने, सिर्फ रस आया। ये जब अंदर जाएगी पचेगी उदो खून बनेगी, कुछ दिनों बाद एकदम नहीं बनती, एकदम रस आ जाता है, एकदम खून नहीं बनता। रस ते उसे वक्त आ गया, भुख भी मिट जाती है, खून उसे वक्त नहीं बनता, समा लगता है, वक्त लगता है। हुण मैं अर्ज करा रस वाहेगुरु आखदिया भी उसे वक्त आ सकता है, उसे वक्त आ सकता है। मैं अक्सर अर्ज करना होना जमीन दे यात्रा तय आउंदी है पैरां नाल, ते अंदाजा लग जांदा इतने घंटिया च पहुंच जावांगे, इतने दिनां च पहुंच जावांगे। परमात्मा तक यात्रा तय आउंदी है जबान दे जपण नाल, किन्ने घंटे किन्ने महीने च यात्रा पूरी होवेगी, एक सैकंड, एक सैकंड, सिर्फ एको ही सैकंड लगता है। निर्बाउन कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटे, निमक एक सैकंड, एक सैकंड। एक चित जय एक छिन ध्यायो काल फास के बीच ना आयो एक छिन एक सैकंड यात्रा ते पूरी हो सकती एक सैकंड दे च लग जाते ने कई जन्म जिंदगियां लग जांदियां कारण बार जे हथां ने भोजन बनाया ते मुंह ने खादा भी है पर अक्सर भजन जबान कर दी ते है जपते कर दे ने भोजन ते बना लेंदे ने छक दे ने इस वास्ते सतगुरां ने कह दिता जे को कावे जे को बुनचे कल दे लवज मैं दोहरा दया रोटी कमानी रोटी पकानी औखी है खानी सौखी है पर मैं अर्ज करा भजन दी दुनिया दे च अगर इनू अध्यात्मक खुराक बना ली है ते ए पकानी कमानी ते सौखी है खानी औखी खाना की है जे को खावे जे को बुनचे खाना की है गावीए सुनिए सुन के भुख मिटेगी जिमें भोजन दी बुरकी अंदर गई भुख बाहर निकल गई।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington.
2: Radio Station 1550 AM गुरवाणी सेगमेंट तुहाडे तक स्वर्गवासी सरदार अजीत सिंह जी बाद स्वर्गवासी माता सुरिंदर कौर वाद दी याद दे विच 1550 AM तों गुरवाणी प्रचार कीता जांदा है। 1550 रेडियो दे उत्ते गुरवाणी दे किसे भी प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन वास्ते 604-961-7790 604-961-7790 1550 AM वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
3: सुन दे जी।
4: हां जी
3: दसो जी की पकाइए
4: अपने गवांड वाले फुटी के न जाइए आलू जी दे बधिया बैंगन अनमोल ने गोभी उत्थे ता

0: सब्जी भले खाना है, रोटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह, पंजाब दे विच जे रुपये पहुंचदे करने ने, जे रुपये बाफर हो गए तां डॉलर इत्थे पहुंचने करने ने, तां गगन सिंह 604-349-1313 24 घंटे दे विच पंजाब रुपये पहुंचणगे ते 24 घंटियां दे विच डॉलर इत्थे ले लियो। 604-349-1313 यूनिट 103-8840-120 स्ट्रीट सरी 604-349-1313 604-349-1313 गगन सिंह पंजाब फॉरेक्स दावा ते वादा पक्का।
5: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.
6: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
7: ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੀ?
8: ਹਾਂਜੀ।
7: ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਪਕਾਈਏ?
8: ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢ ਵਾਲੇ ਫਰੂਟੀ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ।

जपो त एको नामा अवर निराफल कामा अवर काज तेरे किते ना काम मिलसाद संगत भज केवल नाम ए रब्बी दौलत ए रब्बी सौगात धन गुरु नानक देव जी महाराज सारियां दी झोली च पावे सारियां दियां झोलियां भरन सारियां दी जिंदगी सफल होवे सारियां दा और इत्थों दे मुखी सजणा दा सारियां दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद बोल चुक दी शमा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: स्वाइस दीजिए सब्जी फल खाना है
1: फ्रूटी क्या नहीं जाना है
0: फ्रूटी क्या नहीं जाना है
2: फ्रूटी क्या नहीं जाना
3: फैमिली केयर फार्मेसी
4: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन
3: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो
4: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो
3: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो
4: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन
5: थ्री लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
3: जा कॉल किरण एट 604-581-1900
6: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gerdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gerdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GerdaleBaudGroup.com.
7: Sniper.

0: तेजे सब्जी भले खाना है, रोटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह, पंजाब दे विच जे रुपये पहुंचदे करने ने, जे रुपये बाफर हो गए ता डॉलर इत्थे पहुंचने करने ने ता गगन सिंह 604-349-1313 24 घंटे दे विच पंजाब रुपये पहुंचणगे ते 24 घंटियां दे विच डॉलर इत्थे ले लियो 604-349-1313 यूनिट 103-8840-120 स्ट्रीट सरी 604-349-1313 604-349-1313 गगन सिंह पंजाब फॉरेक्स दावा ते वादा पक्का।

क्या वाकई परमात्मा समझदे चाह जांदा? कतई नहीं, कतई नहीं। अगर वो समझदे चाह जांदा तो मेरी समझ वड्डी है, परमात्मा वड्डा नहीं है। तू समरथ वड़ा मेरी मत थोरी ना। हे प्रभु, तू ते सागर दी तरह है, मेरी अकल मेरी समझ ते छोटा जिहा प्याला है। ये प्याले दी सागर किस तरह आएगा? लेकिन एक समझ मिलती है कि समझ समझ के ए समझ मिलती है, हे प्रभु मैं तेनू नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। क्यों? तू मेरी समझ तो वड्डा है।

0: इस तेजे सब्जी भले खाना है,
1: फ्रूटी क्या नहीं जाना है,
0: फ्रूटी क्या नहीं जाना है, फ्रूटी क्या नहीं जाना।
2: फैमिली केयर फार्मेसी
3: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
2: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
3: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
2: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
3: फ्री प्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
4: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
2: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
5: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.

तेग बहादुर साहब महाराज गुरु हरगोबिंद साहब दी छेवीं संतान ने, छेवीं संतान तां शब्द वरते है हजूर दे आगमन तो पहला गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे चार बेटे और एक बेटी है, बाबा गुरदित्ता जी, बीबी वीरो जी, बाबा अटल राय जी, बाबा सूरजमल जी और बाबा अणी राय जी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का आगमन श्री अमृतसर साहब की धरती ते होया है। हजूर महाराज जी का जिस जगह ते आगमन होया उथे गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव ते गुरु हरगोबिंद साहब जी ने श्री अमृतसर साहब रहिंदिया अपनी रहायश रखी ते उस अस्थान नूं असी शब्द वरतने गुरु का महल। अमृतसर साहब दी धरती ते उस गुरुद्वारे दा नाम गुरु का महल है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दा आगमन अमृत वेले हो है। इतिहास कहिंदा है कि सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दरबार साहब आसा की वार दा कीर्तन सरवण कर रहे सन ते उस वक्त समाप्ति वेले सेवक

गुरु रूप सत्संग जीओ फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धार्मिक पुरुषों ने खास करके धार्मिक लिखारी साहित्यकार विद्वान उन्हां दा ऐसा कहना है कि मनुखां नूं पंज श्रेणियां विच वंडिया जा सकता है या इंज कह लईए मनुख धार्मिक दृष्टिकोण दे मुताबक पंज तरह दे ही हुंदे ने। ये किस्मां मैं थोड़े सामने रखा और इस विच ये देखांगे आपां कि असी कित्थे खड़े हैं। इन्हां पंजां विच पहली श्रेणी, दूजी श्रेणी, तीजी श्रेणी, चौथी या पंजवें, प्रथम श्रेणी, पहली श्रेणी, इसनूं वो इस तरह बयान कर देना। कुछ पूर्ण पुरख जो पूर्ण हो गए, ते पूर्ण कदों होंदा है मनुख जद पूर्ण नाल जुड़दा। पूरा प्रभ आराधया, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। जितने चिर तक पूरे दी प्राप्ति नहीं, मनुख दा जन्म अधूरा है, जीवन अधूरा है, मरण भी अधूरा है।

0: इस तेजे सब्जी भले खाना है
1: फ्रूटी क्या नहीं जाना है
0: फ्रूटी क्या नहीं जाना है
2: फ्रूटी क्या नहीं जाना
3: जिंदगी दे हिसाब किताब वांग बिजनेस दा हिसाब किताब भी बहुत औखा है। पहला मेनू भी यही लगदा सी पर जदों मेनू बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां बारे पता लगा ओदो तो मैं टेंशन फ्री हो गया। जिन्हां नूं है 30 साल तो भी वध दा तजुर्बा। टैक्स पेपर फिल करने होन, बुककीपिंग होवे या किसी भी तरह दा फॉर्म भरवाना होवे तां अज ही संपर्क करो बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां नूं। कॉल 604-325-8370 604-325-8370
4: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।
5: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.